0: जनमत पाठ से विश्राम याद रखना, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो,
1: कल जोड़ कर सुजस बखाण्यो, भगत जोग कौ जैत वार, हर जनक उपा

0: बिमल बुद्ध सतगुर समाणो।
1: बिमल पाठ ही करना, बिमल नहीं करना। बिमल बुद्ध सतगुर समाणो।
0: आजोनी आजोनी

सम्मान योग सत्संगी जनों, हर साल की तरह इस बारी भी अपन फिर मिल बैठे हाँ। जिमें जिमें समा बीतता जाता है तिवें तिवें संगतां विच शरदा भावना ते सतगुरां दे इन्हां मुबारक स्थानां दे दर्शन करन दा चाव पैदा हुंदा है। हर वारी गिनती वधदी जांदी है और चाहीदा भी है। सतगुरु बख्शिश करे इन्हां स्थानां तों सानूं प्रेरणा मिलदी है, जीवन जाच आउंदी है। वो आत्मा जिहड़ियां परमात्मा हुईआं उन्हां दीआं जीवनीआं तों सिखण नूं मिलदा है। बाबाणियां कहाणियां पुत सपुत करे जे उन्हां ने मरना सिखिया तो वह किवें सिखिया, जीवना सिखिया तो वह किवें सिखिया। आरे नाल दुफाड़ हो रहा है ते जबान ते रोम रोम विच बाणी है, देग विच जड़ा उबड़ रहा सी उस दे रोम रोम विच बाणी है। बंद बंद कटिया जा रहा है, रोम रोम विच बाणी है। उना अभ्यासियां ने सतगुरु नूं आपा समर्पित कीता ते सतगुरु ने उना दीआं आत्मा नूं वड्डिया कर दिता। कीर्तनियां वास्ते थोड़ी जी मुश्किल हुंदी है कि इन्हां स्थानां नाल किहड़ा शब्द है जिहड़ा टुकदा है, चोण करनी मुश्किल हुंदी है। मेरे वास्ते सौखा यह है कि मैनूं मेरे अति सत्कारयोग साडे सारिआं दे प्यारे वीर ज्ञानी बिंदरपाल सिंह जी मैनूं प्रेरणा दे दिंदे हन। उन्हां ने अज मैनूं हुक्म कीता कि मैं नाम दे विशे ते आप संगत नूं कीर्तन सुणावां। सतगुरु त्रुट के नाम की दात बख्श दे, इस तो वड्डी दुनिया की कोई दात नहीं है, बाकी सब फिकियां हैं। कोई दात सुख नहीं दिंदी, माया कदे सुख नहीं दिंदी, माया सिर्फ साधन खरीद के दिंदी है ते साधना विच कदे भी सुख नहीं होया। सुख सिर्फ परमात्मा दे नाम विच है। बाणी दा अभ्यास करिए, बाणी पढ़िए, जिन्हां हालातों विचों आपां गुजर रहे हाँ उन्हां हालातों में सिर्फ इको एक आसरा है, वह है बाणी का। बाणी सानू सच्ची मुची चंगी सेध देगी। सतगुरां ने सानू बाणी का एडा वड्डा खजाना दिता है, फिर भी जे सिख फटक जावे तो फिर गुरु का नहीं कसूर। बाणी आखदी है कबीर साचा सतगुरु क्या करे जा सिखा में चूक। असी बाणी का अभ्यास करिए, बाणी पढ़िए, बाणी विचारीए, ते जो कुछ हो रहा है ना जी, सानू गुरु नालों भी तोड़िया जा रहा है, मड़ियां मसाणा नाल जोड़िया जा रहा है। कई तरह के साडे ते शब्द नाल तोड़न वास्ते हमले हो रहे हैं। आपस में भरावां दी जिहड़ी लड़ाई हो रही है ना जी, इहदे पिछे भी मनसा इहो ही है कि शब्द नाल टुट जाण, एकता ना होवे। मेरा विशा नहीं है पर मैं रोज़ दे हालातों देख के दुखी हुंदा हाँ। सतगुरु बख्शिश करे, अपना अरदास करिए सतगुरु गरीब नवाज पिता पंथ विच एकता की बख्शिश करो। ये पंथ एक मंच ते दिखाई देवे, पंथ ते ग्रंथ की आपस में जो सांझ है ये सारी दुनिया नूं पता लगनी चाहिए है। पंथ गुरु ग्रंथ साहिब दी ताबिया विच है। तो अज दा ये दूसरा दीवान, कल उस महान स्थान ते अपां फिर मिल बैठांगे। बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जिन्हां दी शहादत दी मिसाल दुनिया ते किते नहीं मिलती। असामियां जंगां होईयां जिन्नियां भी होईयां, कमाल ते है जे पिछे जंग होई चमकौर दी 10 लाख ते 40 दा कोई मुकाबला हुंदा जी। अगे जो होना है उस विच तो किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं, पर यह गल भी पक्की है कि उन्हां साहिबजादियां दी शहीदी विचों सानू जीवन मिलिया है।
साहिबजादे शहीदी ना दिंदे, शहादत ना दिंदे, ते साडी जिहड़ी अज दी रूपरेखा ही ना हुंदी, साडा इह रूप ना हुंदा, असीं कुछ होर हुंदे। तो उस थां ते कल मिल बैठांगे। पाजी साहब जी जो मैनूं प्रेरणा देणगे, मैं उस हिसाब नाल ही आप संगत नूं सतगुरु दी बाणी दा कीर्तन सुणावांगा जी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नामवर और बहुत ही जिम्मेवार मैंबर साहबान पूरा सहयोग दे रहे हन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैनेजर साहब इत्थों दे पूरा सहयोग दे रहे हन, और आप संगतां दे ते प्रबंधकां दे सहयोग तों बगैर ये गुरमत समागम होने भी असंभव हन। तो जिथे सभना का धनवाद है, उत्थे शुक्र है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कर्ता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभं गुरुप्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है, हर जीवन नो तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा।

कौन पशु जो पास बेच रह गए, पीछे रह गए। तो मनुख तो पीछे है सारा पशु जगत, और इस पास जगत देच, इस पशु जगत देच चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, वनस्पति आ जाती है, हथा की कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते ने, क्योंकि गुरबाणी ने इन्हों भी यौन मने है। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया, अनंत जन्मा तक अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे, तू पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख, ये तीन तरह के पड़ाव तो लंघदा है, और इन्हां तीन पड़ावां नू नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ये बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी ही तलते ही नहीं, पंछियां दे छवी ने, पशुआं दे छवी ने, पक्षियां दे छवी ने, और पत्थरां दे छवी ने, ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए जैसे सतपुड़े नु कहंदे ने बिरध हो गया, ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने जैसे कि हिमालिया, पर ऐसे भी टीले जे खड़े ने उसर रहे ने उच्चे हो रहे ने, जिन्हां नू कह के देख के ये आखना पैंदा है इते बच्चे ने, कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ देच भी ने उभरणगे, समा लगेगा। लेकिन गल ते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है, गल ते इस दी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह की जिंदगी नहीं जीवंदा, कई तरह का जीवन जीवंदा है। इसका सामाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है, इसका कुछ अध्यात्मिक जीवन है। पूर्ण पुरुख उसनों कहंदे ने जो सामाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी दा, पूर्ण पुरख, मुकम्मल इंसान, पूर्ण पुरख। वो पूरा है जिसका सामाजिक जीवन पूरा है, वो पूरा है जिसकी राजनैतिक सोचनी पूरी है, वो पूरन है जो धार्मिक तल ते पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इन्हां जिंदगी दे च भी, इस तरह की जिंदगी दे च भी समाज राजनीति ते धर्म दे च भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है। शरीरक बचपना अखां नाल देखिया जांदा है, समाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पड़ेगा, अंदर दी अख नाल देखना पड़ेगा। शरीरक जवानी देखनी है अखां नाल दिखाई दे जांदी है, जवान है, पर किसे दा राजनैतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिदी है, अंदर दी सोच चाहिदी है। कोई धार्मिक तल ते पूरा है इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिदी है अंदर दी, पर कोई शरीरक तल ते

0: बुजुर्ग है, बूढ़ा है, बुढ़ा हो गया है, ये अखां दा विषय है, अखां ही दस देंदियां ने। ये बुढ़ा है लेकिन अख ए नहीं दस सकती कि धार्मिक तल ते किथे खड़ा है, अख ए भी नहीं दस सकती कि समाजिक तल ते किथे खड़ा है, अखां ए भी दसण दे असमर्थ ने कि ए राजनीतिक तल ते किथे खड़ा है, किथे अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहती है, अंदर दी अग अक्सर मनुखां दी बंद ही रहती है। बाहर दी अखां ए दो ने, अंदर दी अग वो एक है, और वो मनुख दे अंतिशकरण नु वेख सकती है, वो प्रकृति दे अंदर जाती मार सकती है, वो अख बहुत गहरा वेख सकती है, ये अखां इतनिया गहराई तक नहीं जा सकदियां। पर देखण दे चाहुंदा है एक दिन ये दो अखां भी हमेशा लई बंद हो गईयां, वो अख खुली ना, दोहे दिवे मलक बहठा आए, गढ़ लीता गठ लुटेया, दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहंदे ने आया एक दिन मौत दा मलक, अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लब्बण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, ओ ते जल ना सकया, ए दो बुझ गए। जीवन अंधकारमयी हो गया, जीवन मसिया दी रात बन के रह गया, जबकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गए। ओ जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नु कह दिता जांदा है त्रैनयनं, तीन नेत्रा वाला, त्रिलोचन, लोचन अखा नु कहंदे ने, त्रिलोचन इहदे कोल तीन नेत्र ने, इहदे कोल तीन अखां ने। अक्सर हर मनुख नु असीं कह सकदे हां दोए लोचन, दोए लोचन। त्रिलोचन जो हो गया उते संत है, उते भगत है, उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है। त्रिलोचन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा दे शिवजी नो कहिंदन त्रैनयनं, बरी पुत्र का ताहे को प्यो त्रैनयनं, ये तीन नेत्रां वाला कहिंदे ने, ए दो अखां खुलियां संसार दा असली रूप दिखाई देंदा है, किसे किसे नू दिखाई देंदा है, अजे बच्चे नू नहीं दिखाई देंदा, नवे बच्चे जन्मे नू ते मां भी नहीं दिखाई देंदी, उनू कोई पता नहीं मां है, सामने प्यो खड़ा है उसनू कोई बोध नहीं है मेरा पिता है, सामने बहन खड़ी है इसनू कोई ज्ञान नहीं है मेरी बहन है, ये मेरा भरा है, अजे अखां इसदियां दो खुलन गियां, सहजे सहजे खुलन गया, सहजे सहजे संसार दी असलियत प्रगट होवेगी। पर जिस दिन तीसरा नेत्र खुलदा है संसार भस्म हो जांदा है, निरंकार प्रगट हो जांदा है। ये एक मिथ है कि शिवजी जद अपना तीसरा नेत्र खोलदा सी जो कुछ सामने सी भस्म हो जांदा सी, वाकई भस्म हो जांदा सी, संसार निरंकार दा रूप दिखाई देण लग पैंदा सी, संसार खत्म हो गया, निरंकार प्रगट हो गया। ए तीसरा नेत्र संसार नु भस्म कर देंदा है, निरंकार नु प्रगट कर देंदा है। जिस भी किसे दा खुल जाए त्रिलोचन, तीन नेत्रा वाला, मनुख दे अंतिशकरण दे प्यास ते है ए अख मेरी खुले। इस वास्ते बहुत सारे लोग ते अपना नाम भी यही रखांदे ने, मां बाप अपने बच्चियां दा नाम रख देंदे ने त्रिलोचन, तीन नेत्रां वाला। भावे अजे दो अखां भी ढंग दियां नहीं खुलियां, अजे संसार नूं भी देखण दे च ए असमर्थ है, लेकिन त्रिलोचन, त्रिलोचन धर्म दी दुनिया दे च इक शिखरमई अवस्था है। तीसरा नेत्र खुल गया। तो खैर जैसे शारीरिक तल्ला बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, कोई सामाजिक तलते भी बच्चा हो सकता है। उसके रिश्तियां दे पुख्तगी नहीं होगी, उसके संबंधा दे पकियाई नहीं होगी। बच्चा खिडौणिया नाल खेडदा है, तोड़दा है। समाजिक तल ते जो अजे बच्चा है, सवेरे संबंध जोड़दा है, शामी तोड़दा है, शामी जोड़दा है, सवेरे तोड़दा है। रिश्ते बनदे ने, टुटदे ने, बनदे ने, टुटदे ने। मिट्टी दे घर बनाना, फिर मिटाना, बच्चियां दा कम बनाना, मिटाना, ठेठ संबंध जोड़ने ने, तोड़ने ने। समाजिक तल्ला बचपना है। सवेरे रिश्ते जोड़े ने, शाम नू तोड़ देते ने, शाम नू जोड़े है, सवेरे तोड़ देता है। तो किधरे किधरे कौमी पद्धर ते, देश पद्धर ते भी समाजिक बचपना दिखाई देता है। किधरे किधरे राजनैतिक बचपना, राजनीति भी सारी इसे आधार ते खड़ी, तोड़ फोड़ ते। ए जोड़िया, ओ तोड़िया, ओ तोड़िया, ए जोड़िया। इस जोड़ तोड़ ते जिस मनुख दी राजनीति खड़ी है, तो एक गल स्पष्ट हो गई कि राजनैतिक बचपना है। धार्मिक बचपना, जो धर्म नहीं है उसनु ही धर्म समझ लेना। गुड्डी गुड्डे दा व्याह कर दे पैने बच्चे, व्यर्थ। ए व्याह खेल हो सकता है। जो अजे धार्मिक तल ते बचपना, बचपन दे दौर चो लंघ रहे है, उदे सारे कर्म खिडौणिया तो ज्यादा कुछ भी नहीं होंगे। और खिडौने भी गुड्डे ते गुड्डे दे। भगत कबीर कहंदे ने, माथे ते लख हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। अगर राम खिलौना है तो खिलौनिया नाल बच्चे ही खेड़ देने। जो धार्मिक तल ते बच्चा है, राम खिलौना है। राम कोई वास्तविकता नहीं है, राम कोई सच्चाई नहीं है, राम कोई हकीकत नहीं है, खिलौना खेड़ना है। मन दा परचावा, सिर्फ मन दा परचावा। जैसे बच्चा खिडौणिया नाल खेड़ रहा है, मन दा परचावा। इस जरा शरीरक तल ते वड्डा हो गया, इस दे परचावे जरा वड्डे ने, इदियां ख्वाहिशां जरा वड्डियां ने। तो खिडौना भी बहुत वड्डा चाहिदा है, और मामूली खिडौना नहीं, राम दा खिडौना चाहिदा है, ईश्वर खिडौना चाहिदा है। ताए खेड़े, क्योंकि ख्वाहिशां बहुत वड्डियां, कामनावां बहुत वड्डियां, वासना बड़ी अपार। तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है। तो राम खिडौना है, खेड़ना है। ये तीन तरह की जिंदगी रेच तीन तरह के पड़ाव मिलते ने, बचपना, जवानी, वृद्धावस्था। समाजिक जीवन विच, राजनीतिक जीवन विच, धार्मिक जीवन विच। चूंकि गल करिए धर्म दी, ते धर्म ही एक ऐसा विषय है जिन्हों समझ लईए ते सब कुछ समझ लिया, जिन्हों नहीं समझिया ते कुछ भी नहीं समझिया। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। धर्म नु जानिया ने, परमात्मा नु जानिया ने, जानकारी बहुत कठी कीती है, और कहिंदा मैं ए जानदा, मैं ए जानदा, मैं ओ जानदा। अच्छा कहने तू कुछ भी नहीं जानदा, अनजान है। की होया तू वनस्पति शास्त्री बन गया, की होया जे तू अर्थशास्त्री बन गया, की होया जे तेनू शरीर दी कोई समझ पै गई है, वैद बन गया, की होया जे तेनू कोई थोड़ा जा फिलसफा घोटना आंदा है, अजे जीवन दी मूल सता दा तेनू कोई बोध नहीं, अनजान। बहुत सारियां दा ज्ञान अनजानपने दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। इसनू इंज कहिए, बहुत सारियां दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा होंदा है। आधार शिला अज्ञान है, उपर ज्ञान खड़ा कीता है, तो वो सारी जानकारी बेमैनी हो जाती है जितने चिर तक धर्म का ज्ञान ना होवे। कहिंदे ने एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चिया नाल खेड़दा खेड़दा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहिंदा सी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ बोध है, मैनू सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहिंदे ने जद मैं जवान होया तो छोटे आउंदियां बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी ओ बोल जद मेरे सामने आउंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवानां दी महफिल विच बैठ के कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। और यही महापुरुष कहिंदा अज मैं बुढ़ा हो गया। एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची, मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नू भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नू जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जांदी है अगर परमात्मा नू नहीं जानिया, ईश्वर नू नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दियां इस अवस्थावां नू जिस ढंग नाल खोलिया है, ओ मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नू पेश कर रहा। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन, पर ए जीवन ऐसा है जैसे किसी मां दी गोद दे चुसदा बच्चा, एक मासूम बच्चा, और उस बच्चे नो ए भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मेनू गोद च लिया, अज जमे है, एक दिन दा है, दस दिन दा है, पंद्रह दिन दा है, बैठा ते मां दी गोद च है, सो रहा है मां दी गोद च, लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं, कुख दा कोई ज्ञान नहीं, पिला रही है, रिजक दे रही है दुध मां, पर रोजी देहिंद दा इसनु कोई बोध नहीं है, परचा रही है, खिड़ा रही है अपने हथा नाल, पर ए हथ की ने, कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखिए बहुत सारिया नू कोई बोध नहीं, असी कित्थे आ, किस दे हत्थां दे चा, किस दी गोद दे चा, इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया, पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है, कुछ भी बोध नहीं, मुंह दे जबान है बोल नहीं सकता, हाथ हैगे ने कुछ भी नहीं कर सकता, पैर हैगे ने चल नहीं सकता, दिमाग है सोच नहीं सकता, कान हैगे ने नहीं सुन सकता। इस बच्चे नु कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इन्हू कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इन्हू कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारिया का धार्मिक दुनिया के जन्म ते हो जाता है, जन्म हो गया है, ये असी किस तरह वेखांगे, मंदिर जान लग पे है, गुरुद्वारे जान लग पे है, पूजा पाठ करन लग पे है, बाणी पढ़न लग पे है, कथा कीर्तन सुनन लग पे है, अमृत वेले उठन लग पे है, कर्म कांड प्रवृत्त हो गया है। लेकिन ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸੇ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਖਿਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ, ਸੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੋਦ ਵਿਚ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚੇਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਵੀ ਅਚੇਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਅਚੇਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਚੇਤ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝ ਸਮਝ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਏਥਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਅਮਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਕਤੀ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਕਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਮਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਦੀ ਮੁਰਦਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਵੀ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਬੋਧ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਤਰਫ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਰੀਰਕ, ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਮਾਜਿਕ, ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਜਨਮ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ, ਲੇਕਿਨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਿਓ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਚੇਤ, ਅਜੇ ਨਵਜਾਇਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧਾ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੈਣ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਗਲਤ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਅਨਾਚਾਰ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਕਈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਅੰਧੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇਨ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋ ਕੋ ਥੇ ਜਾਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਦਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ, ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते।

एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममंशीलं सर्वपावने मम पावन सर्वकर्तव्ये ममं कर्ता

हिम्मत। नमो अंधकारे, नमस्कार तेरे को हे अंधकार दे स्वरूप परमात्मा, नमस्कार। ते जे मैं कह दिया प्रकाश तेरे तो आ रहा है, ते अंधेरा किसे होर तो आ रहा है, ते दा मतलब तेरे मुकाबले भी कोई होर है, फिर ते गल होर हो गई, फिर ते समदृष्टि ना हुई। इस्लाम ईसाइयत ऐसा कहती है, नेकियां खुदा तो आउंदियां ने, बदियां शैतान तो आउंदियां ने, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा वो मनते हैं। और आप भी ज्ञातली अर्ज करना, जेड़े हज करन हाजी जाते हैं, जिथे खाना खुदा दी वो हज करते हैं, तो उस गुफा की भी हज करते हैं जिथे मुहम्मद साहब की पहली समाधि लगी, तो एक शैतान की मूर्ति उन्हें पत्थर भी मार के आते हैं, तू बदियां भेजना है। ये समदृष्टि नहीं है, ये मोटी अकल है, ये मोटापन है। चलो इस मैं बहुत होर रूप से ना बयान करा। नेकियां खुदा तो आउंदियां ने, बदियां शैतान तो आउंदियां ने। पर कमाल की गल, जब कोई समदृष्ट हो जाता है, उसकी खेड कोई होर हो जाती है। नहीं को मूर्ख, नहीं को सियाणा, वरते सब किछ तेरा बाणा। साडा दावा नहीं असी चंगे हाँ, साडा ये कहना भी नहीं कोई माड़ा है। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोहे, प्रणवत नानक तारे सोए। क्यों? नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, ये अंधकार दे स्वरूप परमात्मा तेनू नमस्कार है, ये प्रकाश दे रूप परमात्मा तेनू नमस्कार है। आत्मा दे तल ते जीण वाले नू दो दिखाई नहीं देते, एक एक कोई दिखाई देता है। और जिसनू आत्मा दे तल ते एक दिखाई देने लग पे, फिर वो एक दा रूप हो जाता है, जन्म मरण मिट जाता है, जीवन यात्रा सफल हो जाती है। सब कुछ वख वख दिखाई दे रहे हैं, जमदा रहेगा मरदा रहेगा। कुछ अपने दिखाई दे रहे ने, कुछ बेगाने दिखाई दे रहे ने, ये भी जमदा रहेगा ते मरदा रहेगा। ये भी यात्रा दे च है, ये भी अजे मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंचे। मैं फिर अर्ज करा, सब ओपरे ने, कोई भी अपना नहीं, ये शरीर दे तल दा जीवन है। नहीं, कुछ अपने भी ने, किसी नाल विचारां दी सांझ है। कोई सानू भी याद करदा है ते असी भी किसी नू याद करदे हां। किसी दी सोचनी विच असी हैगे हां, साडी सोचनी विच कोई है, किसी नाल सोचनी मेल खांदी है, किसी नाल विचारां दी मेल सांझ बन गई है, किसी नाल यादां दी सांझ बन गई है। वो भी याद करदा है, असी भी याद करदे, कुछ अपने हैगे ने, असी कुछ अपने ने। एक तीसरी दृष्टि, सब अपने ने, कुछ भी ओपरा ने। सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। शेख सादी साहब कहंदे ने, सुनीदम के मर्दाने राहे खुदा। जिड़े खुदा दे मार्ग ते चल दे ने, कहंदा मैं सुनया है, सुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, दिले दुश्मना न कर दंद तंग। वो दुश्मन दे दिल नू भी चोट नहीं पहुंचांदे। क्यों? दुश्मन दुश्मन नहीं दिखाई देता। तुरा की मुयसर शब्द ई मकाम, के बादो सतानत खिलाफ अस्त जंग। तेनू ये रुतबा कदों नसीब होवेगा, तू ते अपने दा जीवना हराम कीता होया है। आत्मा दे तल दे जीण वाले दी दृष्टि ते कोई बेगाना भी बेगाना नहीं है, तू ते अपने नू बेगाना समझी बैठा, उन्हां दा जीवना भी हराम कीता होया। तो खैर अपने आप नू दिखाई देंदी है, इस वास्ते मनुख धो लैंदा है, पर ये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतरस खे, मैल की ये खे है, जो कपड़ियां ते पै जांदी है, हथां ते पै जांदी है, मुंह मथे ते पै जांदी है।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसदे व्रता कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: अर्पण किया कछु न होए
0: सो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह है
0: रब की जोत सगल कट सो है
1: धनवंता होए क्या को घर पै
0: सब कुछ किसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: देखो होए वह दातार
0: इस दिन हार जाने गा वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थम है थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़ तरह
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: गुर दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: जिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख का हे बिरलाई है
0: गुर बिलखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग दूत सहज तार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आज मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संत संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कह सब कोई
0: मुखो जलहर दरगह सोए
1: यहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतगुर हार
1: है चरण साध के धोए धोए पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो स्नान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंक बेगन ते साधु राख है
0: हर गुण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: भूखे कौ देव ते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरब लिखे का लहना पाए
1: सब किस किस का करना जोग
0: जिस दिन दूसर हवा न हो
1: जप जन सदा सदा दिन रैणी
0: सब ते ऊंच निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाकै मन गुर की प्रतीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: भगत भगत सुनिया तेह लोए
0: जाकै हृदय एको होए
1: सच करनी सत्ता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृढ़ साचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सो जन सच समाता।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: साहब ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संतजना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: सुनत कमाप्त होत उदहार
0: आप त्रैलोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजै
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आ जंजाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तुत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब से ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ये फल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समृत शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जा कै मस्तक कर्म प्रपाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम।

0: एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तो ला नहीं करते। कहते जमहूरियत की है, डेमोक्रेसी की है गिनते। अगर खोते 900 ने ते घोड़े सिर्फ 100 ने तो खोते जित जाएंगे, घोड़े हार जाएंगे। गिद्दड़ 900 ने ते शेर सिर्फ 100 ने, शेर हार जाएंगे, गिद्दड़ जित जाएंगे। गौवां सिर्फ 100 ने ते सूअर 900 ने, गुस्ताखी माफे सूअर जित जाएंगे, गौवां हार जाएंगे। मैनू कहण दोगे बहुत सारे मुल्कां दे सूअर ही जित जाते, गौवां ते हार जांदियां थोड़ियां, शेर ते हार जांदे ने थोड़े। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तो ला नहीं करते। फिर ये महान शायर जिसने देश दी वंड तो पहले एक कौमी तराना लिखिया सी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। इन्हें एक होर कीमती गल भी आखी है, जलाले पातशाही हो शख्सी हकूमत किंगडम, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो या डेमोक्रेसी दा तमाशा होवे या जमहूरियत दा तमाशा होवे या शख्सी हकूमत दा करिश्मा होवे, शक्ति होवे, मान मर्यादा होवे, जलाल होवे, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी से आसत से तो रह जाती है चंगेजी। सिर्फ धर्म नू कढ़ दे, कहिंदे चाहे शख्सी हकूमत होवे किंगडम होवे ते चाहे डेमोक्रेसी होवे, सिर्फ धर्म नू कढ़ दो तो हकूमत कर रहा है चंगेज खां, हलाकू हिटलर मोसोलिनी। फिर हिटलर की करेगा, 2.5 करोड़ बंदियां नू कतल करेगा, बंदियां नू सुख देने वास्ते 2.5 करोड़ बंदियां नू कतल करना है, क्रांति लियान वास्ते 3 करोड़ बंदियां नू मारना है, माओसेव तुंग ने 3 करोड़ बंदियां नू मार के ते 3 करोड़ नू उजाड़ के क्रांति लियांदी सी चाइना। जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। धार्मिक मनुख दे बंद बंद क्यों कट दिते गए, एक होंदा है करोड़ों की भीड़ अधार्मिक लोगों की। धार्मिक मनुख सोली ते क्यों चढ़िया, बड़ी भारी भीड़ देखने वाली सी, भीड़ देख रही है सोली ते चढ़ाया जा रहा है भीड़ अधार्मिक लोगों की, एक धार्मिक मनुख नु सोली दिती जा रही है। भीड़ पापियां दी, एक धार्मिक मनुख दा चांदनी चौंक दे गला कटिया जा रहा, शहीद किया जा रहा। भीड़ जालमां दी सी, एक मासूम बच्चियां नू, 2 मासूम बच्चियां नू दीवारां चिणिया जा रहा। ये थोड़े आंदे ने, कल्ला आंदा कि कल्ला भी हर शहर दे च नहीं आउंदा। मैं एक दफा फिर दोहराण लगा, हर शहर दे चोटी दे धनवान होणगे और उन्हां नूं माण भी मिलेगा धन करके, हर शहर दे चोटी दे कारोबारी होणगे, हर शहर दे च दार्शनिक फिलोसफर कलाकार भी होणगे, हर शहर दे च राजनीतिक होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, हर शहर दे च लॉर कानून नूं समझण वास्ते समझण वाले वकील भी होणगे और होंदे ने, हर शहर दे च ब्रह्मज्ञानी नहीं आउंदा, हर शहर दे च संत नहीं आउंदा, हर शहर दे च कोई रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। अगर होंदी ते सानू अरदास च शब्द ऐड करन दी लोड़ नहीं सी, हे गुरुदेव रहमत कर सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते तेरी याद बने। बहुत औखा है मजमून गुरु नू समझना समझाना, प्रभु नू समझना समझाना बहुत बारीक मजमून है, अति सूक्ष्म मजमून है, अति सूक्ष्म। इस वास्ते चोटी दा साइंटिस्ट भी नहीं पहुंच सकया उत्थे जिथे एक भगत पहुंच जांदा है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई, कोई सूरबीर, कोई छतरपति राजा, कोई चोटी दा ज्ञानी, कोई चोटी दा दार्शनिक ते साइंटिस्ट उत्थे नहीं पहुंच सकदा जिथे भगत पहुंच जांदा है, जिथे ब्रह्म ज्ञानी जो है पहुंच जांदा है। तो मैं फिर अर्ज करा, दर घर की सौजी ना है, घर है परमात्मा, दर है गुरु। और दर घर नालों अलग नहीं आंदा, उसे नू दर कहंदे जो घर दे नाल लगे होवे। ते घर दे च जाना है, दर दे चो लंघना पएगा, दर दे च लंघ के घर दे च प्रवेश मिलेगा। दो शब्द में कहां खुलासा, फिर जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, ओही शब्द दे रूप दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है ओही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। और जो प्रकाश दे रूप दे च घर है ओही शब्द दे रूप दे च दर है, और जो शब्द दे रूप दे च दर है ओही प्रकाश दे रूप दे च घर है। जो परमात्मा दे रूप दे च घर है ओही गुरु दे रूप दे च दर है, और जो गुरु दे रूप दे च दर है ओही परमात्मा दे रूप दे च घर है। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे च भेद नहीं है, ते जे भेद ही नहीं है तो फिर दो नाम क्यों ने, ए गुरु ए प्रभु, ए परमात्मा ए गुरु है। अगर भेद नहीं, दोवें एक ने, तो फिर दोहां दा नाम एक होना चाहिए। दो नाम ने, दोहां दियां क्रियावां वख वख ने, तो फिर दो हस्तियां होनियां, दो हस्तियां नहीं ने। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे च कोई भेद नहीं। दर घर नू लगे होया, घर दर दे नाल जुड़े होया, प्रभु गुरु दे नाल जुड़े होया, गुरु प्रभु दे नाल जुड़े होया। इंज दर घर दे नाल जुड़े होया, घर दर दे नाल जुड़े है। सो दर के हा, सो घर के हा। इस दर तक साड़ा तन जाएगा कतई नहीं, कतई नहीं, तन जा ही नहीं सकता। निराकार दे देश ए आकार तन नहीं जा सकता। निरंकार दा देश जेदा कोई आकार नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, ए तन नहीं जा सकता। तन ते इत्थे रह जाएगा। निरंकार दे देश साडा मन जा सकता है, साडा मन जा सकता है। कारण ए मन आया भी सीधा सीधे रूप दे च निरंकार तो आया। इस वास्ते गुरबाणी कहंदी तन ते मिट्टी, ए मिट्टी इत्थे रह जाएगी। मन जोत है, ए जोत दे च जोत हो सकदा है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछा। मन सूक्ष्म शरीर है, इनरल बॉडी है, शरीर दे अंदर एक सूक्ष्म शरीर। कई पुरुष इस ढंग नाल भी जींदे ने और इतनी उच्ची जिंदगी बतीत करदे ने। वक्ती तौर ते सूक्ष्म शरीर दा संबंध अस्थूल शरीर नाल तोड़ भी देंदे ने, कुछ दिनां लई, कुछ घंटियां लई, कुछ समय लई। सनातन जग दे महान जगत गुरु शंकराचार्य एक महीने अपने शरीर चो निकल गए। इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर जिन्हों जोत कहंदे ने, मन कहंदे ने, कढ दिता। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਸੰਦਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਅਰਥੀ ਸਜਾ ਲਈ, ਅਰਥੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਦੁਸ਼ਟੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਉਸਨੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਉਸਨੇ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ, ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਪਿੰਜਰਾ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਜਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦਾ। ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਦੁਸ਼ਟੋ ਮਸੰਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਤਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ? ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੂਰੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਇਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਢੇਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਅਲਾਪੀਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਧਾਰਨ, ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸਾਧਾਰਨ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੌਣ? ਬੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਵਾਟ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪੈਂਡਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗਮ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਲਕ ਹੈ ਜਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪੰਖ ਉਡੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਦ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਉੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਭਿਆਸੀ ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗਮ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ, ਮੱਛੀ ਚੱਲ ਪਈ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿ ਜਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਹਲੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਤੇ ਪਏ ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗਰਭ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਤਨੀ ਵਾਟ ਇਸਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੌਣ? ਜੈਸੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹਿਟਲਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਜੜ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਵੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ 'ਚ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਰਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਤਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਦਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਕਵੀ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਤਬੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਆ ਰਹਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਇਸ ਬਿਰਾਹ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਸੂਮ ਬਿਰਾਹ, ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਬਿਰਾਹ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਜੋ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਫੈਜ਼ ਦਿਲ ਬੰਦਾ, ਫਿਆਜ਼ ਦਿਲ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ, ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। औरंगजेब ने उसे वक्त उदी गुत पकड़ी घसीट के लै गया जिस कमरे दे च प्यो बंद सी नाल दे कमरे च ओनो बंद कीता सत साल विचारी जेल दे च रही है। ये काम कोई ओ कर सकदा है जिहदे कोल दिल नहीं पत्थर होवे, जिहदे कोल दिमाग नहीं सिर्फ जड़ भूसा होवे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे मनुखां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हिटलर जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा, हर नाकस जैसियां दा जल्दी जन्म नहीं आउंदा। कितना मूड, कितना अचेत, पशुआं नूं मात कर गया। सत साल दे प्रहलाद नूं, मासूम बच्चा है, हर नाकश कहिंदा है तू जपया कर जल हर नाकश थल हर नाकश, ताकि तेनू वेख के होर बच्चे भी जपन ते असी निरंकार करके दुनिया दे च जाने जाइए। निरंकार होण दी तौफीक मनुख नूं निरंकार ने दित्ती है। ध्यान नाल सुनना, निरंकार होण दी उमंग ते तड़प भी मनुख नूं दित्ती है। मनुख ऐसा जीवन चाहुंदा है जिहदे च मौत ना होवे, ऐसा जीवन केवल परमात्मा कोल है जिहदे कोल मौत नहीं। मनुख ऐसा रस चाहुंदा है जो कदी बेरस ना होवे, तो ऐसा महारस ते परमात्मा ही है। मनुख ऐसा सुख चाहुंदा है जो कदी दुख दे च ना बदले, ऐसा सुख ते केवल परमात्मा। मनुख ऐसी शक्ति चाहुंदा है जो कदी कमजोरी दे च ना बदले, उस महाशक्ति दा ना ही ते परमात्मा है, और की है। मनुख परमात्मा होना चाहुंदा है, होना चाहुंदा है। परमात्मा होण दी सौगात परमात्मा ने हर मनुख नूं दित्ती है, हर एक नूं दित्ती है। किस तरह? परमात्मा वेखदा है, सब कुछ वेखदा है, मनुख भी वेखदा है। एक गल वखरी है, सब कुछ नूं वेखण दी तौफीक नहीं पर वेखदा है। परमात्मा सुणदा है, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाणिया दूरी है। सदा वेखदा पै, सब नूं वेखदा पै, सब नूं सुणदा पै, सदा सुणदा पै। ठाकर हमरा सद बोलंता, सदा बोलदा पै और उहदा बोल सारी दुनिया विच गूंज रिहा है। अनाहद ना मनुख भी सुणदा है, वेखदा है, मनुख भी समझदा है, पर सीमत है। मनुख भी जाणदा है पर सीमत है। ये असीम होना चाहता है, असीम तो केवल परमात्मा ही है। मनुख परमात्मा होना चाहता है, परमात्मा होण दी इस दे अंदर भुख है, और इंज कह लो शायद परमात्मा नहीं पाई है। और ऐसा हो सके, परमात्मा हो सके, ऐसी तौफीक भी परमात्मा ने दित्ती है। शायद इसे वासे जफर कहिंदा है, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, ऊरे गिलमा को। मनुख तो वद परमात्मा ने किसे नो नहीं बनाया, क्योंकि मनुख दा ही भविष्य है परमात्मा होना, पशुआं दा भविष्य अजय मनुख होना है, वनस्पति दा भविष्य अजय पशु होना है, पत्थरां दा भविष्य ते अजय वनस्पति होना है, केवल मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना। फरवरी दा महीना पिछलिया, इस साल दे जो लंघे, मैं कानपुर दे सी, सज्जन मित्र नाल सन, अमृत वेले मैं नितनेम पिया करां ते फोन आई दिल्ली तो। मैं खैर होवे सही है, अमृत वेले 4:30 कि कौन फोन करदा है। दिल्ली तो एक नौजवान पुछना चाहता है मैनू, कोई मस्कीन जी सुने है, तुसी भविष्य वक्ता हो, भविष्य जानते हो? मैं कहा हाँ जानना, भविष्य वक्ता, भविष्य जानना। कहन लग्या कि फिर तुसी आ रहे हो ना दिल्ली, की बाई संत बाबा अतर सिंह जी दी वरसी ते मैं पहुंचना सी, तुसी आ रहे हो, असी पोस्टर भरे ने, असी थोड़े कोल आवांगे अपना भविष्य जानने वास्ते। मैं कहा उदो ते गल बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत दिन पए ने, मैं थानू हुणे ही भविष्य दस देंदा, तुसी हुणे ही पुछ लो। कहिंदे हुणे ही दस दोगे, फोन ते दस दोगे? मैं कहा हुणे ही दस देंगे। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा केवल तेरा ही नहीं, तेरे सारे परिवार दा, सारे संसार दे मनुखां दा इक्को ही भविष्य है, परमात्मा होना, और कोई भविष्य नहीं। चंगा परिवार मिल गया, तृप्ति नहीं मिलेगी। चंगा कारोबार मिल गया है, परेशानियां नहीं जानगी। बड़ी धन संपदा मिल गई, रहन नू उच्चा महल मकान मिल गया है, बेचैनी नहीं जाएगी। बड़ा बैंक बैलेंस हो गया है, नोटां दे अंबार लग गए ने, व्याकुलता नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, बेचैनी नहीं जाएगी, परेशानी नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उदो मिटन गए जिस दिन परमात्मा मिलेगा, उस तो पहले नहीं। दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी दा धनवान हो, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर हो, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, क्यों होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया। दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी, ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहंदे ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा, तो कबीर कहंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां भी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई, मैं सच हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछानी। मैं कह सारे मनुखां दा एको ही भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नू दिते हुए ने, सीमित ने, ये असीम हो सकते ने। उन्हू याद कर करके किवें उसनू याद करिए? पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया का, और मुखी सजना का बार बार धन्यवाद। फुल चुक दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब, स्कॉट रोड, सरी।
2: सुनी सब बख्याणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। सलोक संत सरन जो जन परै, सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टपदे संत का दुखन आरजा कटै, संत का दुखन जमते नहीं छुटै, संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक मह पाए, संत का दुखन मत होए मलीन, संत का दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत का दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक पीतरै, संत का दुखन ते मुख पवै, संतन का दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै, संत कै दुखन सब को चलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै।

संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया अरनीन, संत के निंदक कौ सर्ब रोग, संत के निंदक कौ सदा बिजोग, संत की निंदा दोख मह दोख, नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसै का नहीं मित, संत के दोखी कौ डाल लाग गए, संत के दोखी कौ सब त्याग गए, संत का दोखी महा अहंकारी, संत का दोखी सदा विकारी, संत का दोखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दोखी कौ नाही ठाओ, नानक संत पावै ता लय मिलाए, संत का दोखी अध बीच ते टूटै, संत का दोखी किता काज ना पहुंचै, संत के दोखी कौ उद्यान भरमाइयै, संत का दोखी उजड़ पाइयै, संत का दोखी अंतर ते थोता, ज्यों सास बिना मृतक की

नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे मह तोल, लाल खेप संतै संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कह सब कोहे, मुख उज्जल हर दरग है सोए, एहो वापार विरला वापार है, नानक ताकै सद बलिहार है, चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की धूर करो इसनान, साध ऊपर जाइए कुरबान, साध सेवा वडभागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है, अनक बिघन ते साधु रख है, हर गुण गाय अमृत रस चख है, ओट गई संतै दर आया, सर्ब सुख नानक ते पाया, मृतक कौ जी वाल नहार, भूखे कौ देवत आधार, सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लैणा पाहे, सब किस तिसका ओ करना जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जान सदा सदा दिन नैणी, सब ते ऊच निर्मल ए करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए तिहु लोए, जाकै हृदय एको होए, सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत, सची दृष्ट सच आयाकार, सच वरतै सच अपासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता।

मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सज जाकै सर्ब थोक सुनी है करता कै राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीसर ग्रस्त मह भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहि सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण मह जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊंच नीच तिसके स्थान।

नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम का संग उदे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी माणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसै बुझाए तिसै सब भले सत नाम प्रभ का सुखदाए विश्वास सत नानक गुरते पाए सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाकर हृदय प्रवेश सत निरत बूझा जे कोए नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करने हार अवना बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद।

जन का सेवक सोवट भागी, जन का संग एक लिवलागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत।

के सेवक का को न पूछै, प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। नीकी कीरी मह कल राखै, पसम करै लस्कर कोट लाखै। जिसका सास न काटत आप, ताकौ राखत देकर हाथ। मानस जतन करत बहु भात, तिसके करत बिरथे जात। मारै न राखै अवर न कोए, सर्ब जियां का राखा सोए।

मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पाव है, तिसके दर्श सब पाप मिटाव है। अवस्यान सगली छा।

मूर्ख मना सोत मीत कुटुंब अर बंता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू लेह याने।

बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुनी सरदा सपूरी, रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका साथ इन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्नि मह रखै, गुरप्रसाद को बिरला लखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै। गुरपूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम।

जब अकार एहो कछ न दिसेता, पाप पुन्न तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग।

जब पूर्ण कर्ता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर गादे तब कौन छुटे कौन।

हस्तपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दिष्टा है नौ निध अंगमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सोझ ही पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट

में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक वाणी प्रभु की सबको बोला आप अडोल न कबहू डोला सर्व कला कर खेल खेल बोल न पाइय गुण है अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में एहो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुन शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही।

है, जो किस कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लए समाए, इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत आत्मिक की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत अपन संग राच, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसरे होए ता सो जी।

साध संग पाई परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण।

जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महंत कह माथे, नानक उधरे तिन कह साथे।

सरनी परै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिया सब ते उच्चा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना देखै सगल श्रेष्ठ साजना

अवनहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानहु आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्त तुमते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते

जिसके अंतर बस है निरंकार, इसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण प्राता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जान, अपना किया आप मान, आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव सियान सगल ते रहत, सब कछ जान आत्म।

नानक प्रभ शरणागते कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद छत्ते अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिस कौ सिमरत परमगत पाव है। जे प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह ते आए सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमर हो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसह त्याग कत अबर लुभाव है। जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तुझ सब को मान है मुख ताको जस रसन बखान है। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगह मान पाव है नानक पत सेती कर जाव है। जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवला हो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जे प्रसाद तुझ को न पहुंचै मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करेहे। जे प्रसाद आप भूखन पहरी जै मन तिस सिमरत क्यों आलस की जै। जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ

मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तुहा चार ब्यौहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुरप्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुन है कर्ण नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जे प्रसाद बोल है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहज जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, इस प्रभु को मूल न मन हम विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, मेरे मन मूड़ तू ताका जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, इसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पाव है साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सब निधान प्रभु तेरी मया, आपो कछु न किन हूं लया। जित जित लाभ हो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जिना की अचरज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सो ज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहि समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुल्लै। साध कै संग आव है बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहूं पावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हों ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कभू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल। साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियान है। साध की उपमा ते हो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्ब कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान।
ब्रह्म ज्ञानी कह तीर्ज एक ज्यों वसुधा को खोदा को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगास जैसे तर उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन अपना है सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मनमा है ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उतारा जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओ अपरस सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श परत्र रूप न पेख है नित्र साध की टहल संत संग हेत।

पंच दुख ते रहत नानक कोट मध्ये को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए पिन कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाछै केवल भक्त कीर्तन संग रचै मंतन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मनते बिनसै सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मंतन अर्पै विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत का पावै सो पंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म है शुद्ध है राम नाम सार रस पीवै उस पंडित का उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सूखम मह जानै स्थूल चौ वरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना मह जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उतारै पस प्रेत मुग्ध पत्थर कौ तारै।

जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर्ग है प्रमाण, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सुझ ही परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हर्ख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी।

तीर्थवासी कई कोट बन प्रमह उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आव है, नानक करते का अंत न पाव है, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ कौहिर है, कई कोट पर दुख न कर है।

कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरक निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर चत्र, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत।

कई कोट तत्व के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सत सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समाव है अपने जन को सास सा समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाहीं को नानक तिस बलिहारण है

सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होए कर गरबावे त्रिण समान कछ संग न जावे बहुलस्कर मानुख ऊपर करे आस पल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिनमें होए जाए पसमंत किसे न बदा आप अहंकारी।

अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दर्ग है कौ कैसे गवै। आपस कौ जो भला कहावै, तिसे भलाई निकट न आवै। सर्व की रेंज आका मन होए, कौ नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए। जब ए जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त हो।

जैसी दृष्टि करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभु सोए। जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हूं कै संग। बूझे देखे करे विवेक, आपै एक आपै अनेक। मरे न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए। आप उपदेसै समझे आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करना हार। उसते पिन कहो किश होए, थान तनंतर एक कैसोए। अपने चलते आप करना हार, कौतक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी, गुरप्रसाद किने बख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मध्य किने बिरले चीना। पला पला पला ते

लोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरनहार संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदे संत का दुखन आरजा कटै संत का दुखन जमते नहीं छुटै संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक मह पाए संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोए संत का दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत का दुखन ते मुख पवै संतन का दुखन काग ज्यों लवै संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन तृष्णा मह जलै संत का दुखन सब को चलै संत का दुखन तेज सब जाए संत का दुखन नीच नीच आए संत दुखी का थाउ को नाहे नानक संत पावै ता ओए पी गत पाए संत का निंदक महा अत पाई संत का निंदक खिन टिक न पाए संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख मह दोख नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख संत का दोखी सदा अपवित संत का दोखी किसै का नहीं मित संत के दोखी को डाल लग गए संत के दोखी को सब त्याग गए संत का दोखी महा अहंकारी संत का दोखी सदा बिकारी संत का दोखी जन्मै मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दोखी को नाही ठाओ नानक संत पावै ता लय मिलाए संत का दुखी अध बीच ते टूटै संत का दुखी किता काज ना पहुंचै संत के दुखी का उद्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा।

संत का दोखी इउं बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दोखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दोखी छुटै अकेला, ज्यों बू आड़ तिल खेत माहे दुहेला। संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुरी पया, नानक ज्योतिष पावै सोई थिया। संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिलै सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी न मरै न जीवाई है। संत के दोखी की पूजै न आसा, संत का दोखी उठ चलै निरासा। संत का दोख न त्रिष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए। पया किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए। सब कर तिसके ओह करनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे ते आवो सास ग्रास। सब कछ वरतै तिसका।

जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदिर कौ थम थमन त्यों गुर का शब्द मन अस्थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरदर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइय पुरब लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तिसै चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिर अजान कौन बस्त आई तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती कर जाए जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे महतोल लाल खेप संत है संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोहे मुख उज्जल हर दरग है सोए एहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलिहार है चरण साध के तोय तोय पियो अर प्रसाद कहो अपना जियो साध की धूर करो इसनान साध ऊपर जाइए कुरबान साध सेवा वडभागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक बिघन ते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चख है ओट गही संतै दर आया सर्ब सुख नानक ते पाया मृतक कौ जी वाल नहार भूखे कौ देवत आधार सब निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका ओ करना जोग तिस्मिन दूसर हुआ न होग जप जान सदा सदा दिन नैनी सब ते ऊच निर्मल एक करनी

सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कहत, सची दृष्ट सच आयाकार, सच वरतै सच अपासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता।

मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पाव है, तिसके दर्श सब पाप मिटाव है, अवर स्यान पसगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक।

निरपेक्ष दर्श सुख होए मन विकसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजै कर माया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत।

जब अकार एहो कछ न दिसटेता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग।

तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी। जब एक हर आगमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब

जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला आपे प्रवीन तै वेद कतेब कहां को चीन जब अपने आप उतार है तो सगन अप सगन कहां भी चार है जय अपने ऊच अपने आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जय अचल अछेद अपेद समाया उहां किसह व्याप्त माया।

संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पहर प्रापे कहो नेरा मिटाया ज्ञान बिनसै अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसावहो मन इच्छे नानक फल पावहो हलत पलत दोले हो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपहो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहु जाए।

सिर उपर ठांडा गुर सूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदृत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रमान, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसै सो होत निधाल, ताके निकट न आवत काल, अमर पय अमरा पद पाया,

अस्तपदि संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अंगमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा।

सब कै मद अलिप्तो रह, जो किस कहना सो आपे कह, आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे ता लय समाए। इसते होए सो नाही बुरा, उरै कहो किने कछ करा, आप भला करतूत आत्मिक की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच, ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर होए ता सोझ ही पाए।

हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर।

जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे।

सो कूके ना सो ये आसार रात दिनस के कूकने कवे के सुने पुकार। कबीर केंद्र में तो दिन रात बोली जाना कैसो कैसो कैसो मैं तो बोली बोली जाना किसी दिन के खेड बने किसी दिन के खेड बने जगत विच असी पहले वेखदे आ फिर बोलदे आ प्रभु नाल ते पहले बोलना पेगा बोलदे ही बोलदे एक दिन दिखाई दे सामने बिल्कुल निकट के तो मैं अर्ज करा जैसे बोलन का फुरना पैदा होंदा पवन नाभि नाल टकर उत्थों धुन उठदी है उन्हों कहिंदे ने परा धुन उठ के जद हिरदे तक पहुंचती है उन्हों कहिंदे ने पसंती इत्थे उसनों शब्द मिलदे ने अल्फाज मिलदे हिरदे तो उठ के वो बोल वाक जद कंठ तक पहुंचता है इन्हों मधमा कहिंदे ने वाक पूरा बन जाए जबान इसनों बयान कर देंदी इन्हों बैखरी कहिंदे परा बसंती मधमा बैखरी इन्हों चार बाणियां कहने परा ही बसंती बनती है बसंती ही मधमा बनती है और मधमा ही बैखरी पवन टकराई नाभि धुन पैदा हुई पर पहुंची हृदय तक अल्फाज मिल गए ही बन गई पूरे का पूरा वाक बन गया जो कहना है कम अंदर बड़ा तेजी ना लाता कंठ तक पहुंचे इनू कहने मधवा जवान ने बयान कर दिता इनू कहने बैखरी धुन बार आ गई जवान तेरा जो नाभि तो उठी सी हिरदे ते कंठ दे च पहुंच गए रसना

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण @604581190।

इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहे है जन्म दर जन्म, एक खोज रहे है लभ रहे है तलाश कर रहे है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहंदे ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश ते चाहे, और तृप्ति तो बिना इसनु होर कुछ भी नहीं चाहिदा। रजेवा चाहिदा है, तृप्ति चाहिदी है, और रजे होए नु ही राजा कहंदे ने। ए राजा होना चाहंदा है, ए राजा बनना चाहंदा है, ए महाराजा बनना चाहंदा है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे आज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद विचों अन्न कट रहे है, धन कट रहे है, और लंबे समय तो इस दी कोख विचों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहे है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनु राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावे जमीन देते रहन वाले जमीन मल के राजा होण दा दावा कर दे रहे, महाराजा होण दा ढंडोरा पिट दे रहे, पर किथे ओ राजे सन। कहिंदे ने सिकंदर ने अंतम समय अपने साथियां नु कहा सी, कफन चो मेरे हथ बाहर ही कढ़ने, ताकि जगत नु पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौट दे ते खाली रहंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकया, नहीं त्रिपत हो सकया, नहीं राजा बन सकया, नहीं महाराजा बन सकया। एक गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने उपर लांदे रहने, ते राजा है ते महाराजा है ते बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुख मरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावे जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा करदे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे बहुत कुछ लभया, लोहा लभया, तांबा लभया, कोयला लभया, और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनु सोना लभया, चांदी लभया, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर भणे, इसने अपना तन सोने दे गहनियां नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते, और इसने लोहे नू, इसने तांबे नू जस्त, इस तरह दी होर मैदनियात नू अपनी जरूरी कम्मां दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया। धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिया मनुख नू रजा नहीं सके, त्रिपत नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़िया, और उसने सागर दे पानी नू छाणिया, चप्पे चप्पे नू छाणिया। बड़ा कुछ इसनू सागर तो भी मिलिया और मिल रहा है, लेकिन झोली फिर भी खाली, फिर भी ये त्रिपत नहीं हो सकया, फिर भी
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਨਿਗਾਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀਏ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੋ ਨਿੰਦ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਲਾਏ। ਐ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਜੀ, ਪਹਾੜ ਸਾਗਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਾਰ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਨ ਲਈ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿੰਦ ਪਾਈ। ਮਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਖੋਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਧਾਤੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੈਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲਿਆ, ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਜੇਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰੇਤ ਲਿਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਦੀਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ, ਸਦੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਖੋਜ
रोज रोज करनी पेगी और उतने चिर तक करनी पेगी जितने चिर तक ए खजाना हथे नहीं आउंदा, ए दौलत हथ नहीं आउंदी। कोई थोड़ा जिया अंतरमुखी होंदा है तो कविता गीत संगीत उसके पल्ले पै जांदा है। जो कवि है ए थोड़ा जिया अंतरमुखी होया है, मन दे एक निक्के जिया कोने विच थोड़ा जिया इसने प्रवेश कीता है, एक कवि बन गया है। मन दे दूसरे कोने विच किसे ने थोड़ा जिया प्रवेश कीता है, एक संगीतकार बन गया है। दार्शनिक हो गया है, फिलोसफर हो गया है, चिंतक हो गया है। पर मन इतना महान है और इस दे अंदर जिना जिना ने भी जात मारी है वो ते कहंदे ने कि मन दा पारावार नहीं, अथा दैवी गुणा नाल ए भरे होया है। कहंदे ने पश्चिम दे मनोविज्ञानक ए आखदे ने कि भारती ऋषि मुनि गलत कहंदे ने कि मन विच राम है कतई नहीं, मन विच काम है। भारती ऋषि मुनि जो ये कहंदे ने मन विच अथा खजाने ने, वो कहंदे नहीं मन विच सिवाय कंगालता तो साडे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। दरअसल पश्चिम ते पूर्व दा जड़ा मनोविज्ञान है उदे आधार अलग अलग ने। पागल बंदियां नू आधार बना के पश्चिम दा मनोविज्ञान खोज करदा रहा कि पागल क्यों हो जांदे ने, पागलां नू आधार बना के ए पागल क्यों हो जांदे ने इस दी खोज ओ मन विचों करदे रहे। पर कोई आनंदित हो गया है, समाधि लीन हो गया है, परम प्रसन्न हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है, ये परम आनंदित क्यों हो गया है, ये परम सुख चैन दी दौलत नाल माला माल किस तरह हो गया है। इस तरह दे तंदुरुस्त बंदे नू आधार बना के भारत दे ऋषि मुनि मन दी खोज कर दे रहे ने। तो एक ने तंदुरुस्त नू आधार बना के मन दी खोज की थी, एक ने बीमार नू आधार बना के मन दी खोज की थी, तो फिर खोज दे जमीन आसमान दा अंतरा ते होना सी। ओ होया है पश्चिम दा मनोचिंतक कहिंदा है मन विच वासना है, मन विच अहंकार है, मन विच लोभ है। जितना गहरे जांदे हां इस तो बिना होर मन विच कुछ भी नहीं है, लोभ ही लोभ है, अहंकार ही अहंकार है और मन काम नाल ही भरे हुए है। आम दृष्टिकोण नाल जे ऐसा देखिए ते कुछ सच्चाई भी प्रतीत आउंदी है कि थोड़ा जिहा मन दे जात मारी है ते अंदर काम है, ते अंदर लोभ है, ते अंदर अहंकार यही फुरने पे चलदे ने। पर ए उपर उपर ने तह दिच नहीं, सता दिच नहीं, लहरां भी सागर दे उपर उपर ने तह दिच नहीं, गहराइयां दिच नहीं। सारी भज दौड़ भी सागर दे उपर उपर है, थले ते सुकून है, शांति है, ठहराव है, एकाग्रता है। सागर दी उछली हुई अवस्था नू ही तूफान कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नू ही काम कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नू ही लोभ कहंदे ने और मन दी उछली हुई अवस्था नू ही अहंकार कहंदे ने। भगत नामदेव जी महाराज साफ कह रहे ने, लोभ लहर अत नीझर बाजे काया डूबे केसो, ए केसो ए प्रभु, बड़ियां लोभ दियां छल्लां ने, बड़ियां लोभ दियां उचियां उचियां लहरां ने, मैं ते डूब रहा, तू मेहर कर, तू बख्शिश कर, मैनू बचा।
तो सागर दी उछली हुई अवस्था नूं तूफान कहिंदे ने। मन दी उछली हुई अवस्था ही लोभ है, मन दी उछली हुई अवस्था ही अहंकार है ते काम है। ऊपर ऊपर कोई देखेगा, इस उछली अवस्था नूं देखेगा तो सिवाय काम, सिवाय लोभ ते सिवाय अहंकार तो और कुछ प्राप्त नहीं होना। तो पश्चिम दा मनोचिंतक ये कहिंदा रहा कि मन दे सिवाय काम तो होर कुछ भी नहीं, सिवाय अहंकार तो होर कुछ नहीं। पागल बंदियां नूं आधार बना के मन दी खोज कीती जांदी रही है। पागल क्यों हो जांदे ने, तवाजन डावां डोल क्यों हो जांदा है, ये अपना संतुलन क्यों खो बैठते ने। अक्सर काम दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, लोभ दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, और अहंकार दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, ते असीम क्रोध संतुलन खो देंदा।

मित्रता दुश्मनी दे च बदल जांदी है, भाईचारा खून खराबे च बदल जांदा है, पति पत्नी दे संबंध कल कलेश ते खड़े हो जांदे ने। ऐसा क्यों हर रोज और हर वक्त छिन छिन बंदे दी हंकार दी पूर्ति कोई मनुख हर वक्त नहीं कर सकता, हर वक्त लोभ दी पूर्ति नहीं कीती जा सकती, और कोई भी हर वक्त मनुख दी वासना नु शांत नहीं कर सकता। तो जिथे इनकार जिथे अतृप्ति उथे क्रोध, यही असीम क्रोध अगा चल के पागलपन दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। तो पागलां नु आधार बना के फ्राइड ते पश्चिम दे होर मनोचिंतक खोज कर दे रहे, ते एलानिया उन्होंने कह दिता मन काम है, मन लोभ है, मन अहंकार है और कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछी है, तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहने मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछान, तू ते जोत स्वरूप है, तू ते परम प्रकाश है, तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ा है। देखदे हां सी सिपियां संख लहरां सागर दे कंडे ते ने, उपरी सतह ते ने, गहराई दे च मोती पए ने, उपर नहीं मोती मिलते, किनारे ते नहीं मोती मिलते। तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ये गहराई दे चे। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब कहिंदे ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोजदिया उसनू नौ खजाने की प्राप्ति हो जाएगी, नौदा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ए राजा बन जांदा है, ए महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहिंदे ने गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वजौ के कज कुलाही नेस्त। हे गुरु गोविंद सिंह, तेरी गली चो जद कोई भूल के भी लंघदा है, वो दो जहाना दी बादशाहत नू ठोकर मार देंदा है, माला माल हो जांदा है, महाराजा बन जांदा है, महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है, त्रिपत हो जांदा है। इसे नूं ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहिंदे ने कि कोई मलकियत बारों इतनी जुटा लवे जितना के सागर दा पानी है, जमीन नालों तीन हिस्से, सागर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, धरती घट है। इतना वड्डा पसरे होया फैले होया ए सागर, और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना के पसरे होया है पानी, समुंद सहा सुल्तान, इसदे घर दौलत कितनी होवे, सोना चांदी कितना होवे, इसदे घर दे हीरे पन्ने रतन जवाहर लाल कितने होवन, गिरहा सेती माल धन, जमीन दे उते जितने पहाड़ ने इतना इसदे घर दे सोना होवे चांदी होवे पन्ने ते रतन होवन। कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरे, ओ कीड़ी जिस दे मन दिच प्रभु भुलिया नहीं, जो समाधि लीन हो गई है, इतना वड्डा बादशाह उस कीड़ी दे समान भी नहीं है, उस दे पैरां दी खाक भी नहीं है। कीड़ी गिणती मिणती च नहीं आउंदी, कई दफा दृष्टि च भी नहीं आउंदी। जिस बंदे दी कोई जात नहीं पात नहीं कुल नहीं, जिस बंदे दी कोई

मारक ताकत नहीं, सामाजिक शक्ति नहीं, आर्थिक ताकत नहीं, कुछ भी नहीं, हर पासे पछड़े होया है। और किसी की निगाह भी उस ते नहीं पैंदी, बिल्कुल कीड़ी दी थल्ले, बिल्कुल सारे पैरों दे थल्ले। पर सतगुरु कहिंदे जे उसके हिरदे च किधरे परमात्मा का नाम वस जाए, वह किधरे अंतरमुखी हो जाए, तो इतना वड्डा बादशाह भी उसके पैरों की खाक नहीं। क्योंकि मलकियत जता के भी जो अंदरों कंगाल है उन्हों महाराजा कहना सिर्फ इतना ही है, जिवें उपर लेबल लगे हुआ है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो जैसे कोई मन विच प्रवेश करता है, गीत मिलते ने, संगीत मिलता है, दर्शन मिलता है, फिलसफा मिलता है, पर यह सब कुछ है थोड़ी जिया गहराई दे है, होर अगे जाना है। सत्संग दा यही लाभ है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कोल बैठ के उसनु सुनन दा यही लाभ है कि मनुख होर गहरा जा सके, होर गहरा जा सके। घबराहट आउंदी है, गहराई दे उतरदे आ। जब थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है, आशा ते बजदी है, शौक ते वधदा है, पर हिम्मत साहस जुटाना औखा हो जाता है। होर गहरे जाइए, होर गहरे जाइए। कदी कदी कोई साहस जुटाता है, जप करता है और बाणी सुनता है, बहुत सुनता है, बहुत जप करता है, और जैसे अंतर्मुखी होके ध्यान नू होर गहराइयां दे चले जाता है, तो रिधियां ते सिधियां उसका स्वागत कर दियां ने। पहले गीत संगीत मिलिया, दर्शन फिलसफा ए मिलिया, हुण रिधियां मिल गईयां, हुण सिधियां मिल गईयां, हुण ए सिद्ध हो गए, ए सिद्ध पुरश हो गए। इहदे बोलां विच बरकत आ गई है, इहदे हत्थां विच शक्ति आ गई है, इहदे कदमां विच क्रांति आ गई है। जिस पासे इसदे कदम जाणगे, अपने नक्श चैन छोड़नगे, अपने पैरां दे चिन्ह छोड़नगे, लोगां लई मार्ग बनेगा। इसदे हथ जिस पासे पसरनगे, महान उसारू कम उत्पन्न होणगे, उपज होणगे। और इसकी दृष्टि जिसते जाएगी, अमृत बरसाएगी। इहदे बोलां दे चों महान उसारू बोल जो जीवन नूं बुलंदियां ते लै जाण, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਪੈਰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧ ਦੇ चरण अपने घर पवाईए, क्योंकि पैर आम पैर नहीं ने। इदे हत्थां तो असीस लईए, इदे हत्थ आम हत्थ नहीं है, और इदे बोल सुनिए, ए बोल आम बोल नहीं ने, खास बोल ने। हत्थां नाल, पैरां नाल, बोलां नाल आदि काल तो साडे देश दे श्रद्धालु लोग संबंध जोड़दे रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੁਬਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, और परमात्मा दी दुनिया शुरू हो जाती है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जैसे कोई होर अंदर प्रवेश करता है, होर गहराइयां दे जांदा है, और गहरे जान दा इक्को ही तौर तरीका है, जप। तो समाधि लीन हो जांदा है। सुन समाद अनहद तैनात, कहन न जाई अचरज बिस्माद। महान बिस्मादी अवस्था उसकी बन जाती है,
परम अश्चर्यता प्रगट हो जाती है और अफुर अवस्था उसकी हो जाती है। तमाम फुरने शांत हो गए, सारी भज दौड़ मिट गई। उस नेचल बिंदु नाल जाके जुड़े है जिसनु परमात्मा कहंदे ने, जिसनु ईश्वर कहंदे ने, जिसनु परम व्यापक शक्ति कहंदे ने। बस उस तक पहुंचदे आ इस समाधि लीन हो जांदा है, और ऐसी समाधि जिहड़ी फिर कदी भंग नहीं आउंदी, ऐसा सिंघासन जो कदी कोई खो नहीं सकदा, ऐसी बुलंदी जिस विच मनुख फिर कदी थल्ले नहीं आउंदा, इस तरह दी अवस्था नूं कहंदे ने कि इस नूं समाधि नसीब हो गई है। समाधि तक पहुंचे होया मनुख उदी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधान ही समाधान। जितने चिर तक समस्यावां ने उन्ने चिर तक समाधि किथे, उतने चिर तक ते चिंतावां ने चिंतन नहीं है, उतने चिर तक ते कोई ना कोई कामना है काम है राम किथे, उतने चिर तक कोई ना कोई छोटी मोटी झलक लोभ दी चलदी रहंदी है, और कोई ना कोई बिंदु अहंकार दा बनिया रहंदा है समस्या। लेकिन इस अवस्था ते पहुंच के मन दी दुनिया तो पार हो के कोई समस्या नहीं, समाधि ही समाधि। हुण जो कुछ हो रहा है जैसा हो रहा है सब कबूल, दरिया दे बहाव नाल वो अपने आप नूं बहा लैंदा है, विरोधता नहीं करदा। ए दरिया जिस पासे हुण तू लै जाना है मैं उसे पासे ही जाना है। आखिर विरोधी दिशा दिच तैर के मनुख लंबा नहीं तैर सकेगा, आखिर टूटेगा थकेगा, और दुनिया दिच ऐसा ही हो रहा है। बहाव दे नाल अपने आप नूं बहा लेना इसे नूं कहंदे ने रब दी रजा दे, इसने अपने आप नूं जोड़ लिया है। जिधर रब रजा है वैण ते दाऊं गाऊं करे, जिस पासे हुण रब दी रजा है बस उस वास्ते ही उसे पासे ही जिंदगी नूं तोर दिता है, जिंदगी नूं छोड़ दिता है ईश्वर दे आसरे ते प्रभु दे आसरे ते। इस तरह दे बंदे दी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधि ही समाधि है। मन दी खोज करदिया करदिया गीत संगीत प्राप्त होए, रिधियां सिद्धियां प्राप्त होएगा, खोजदिया खोजदिया मन तो पार होए तो परमात्मा मिल गया और जीवन धन धन हो गया। सतयुग तय माणियों

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उगर सैन खोराज अभय भगतें जन दियो।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत पेश।

सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में

0: कि बार बार जन्म मरण तो छुटकारा मिले, कितनी सेवाएं सुख प्रवान करनी, कल भी हाजिरी भर के आप तो फिर छुट्टियां लवेंगे। अगला प्रोग्राम दासां दा, दो दिन का झांसी, एक दिन का ग्वालियर है, एक दिन का हिसाब है, ते दो दिन कलकत्ते तो बाद फिर सारा टूर पंजाब का है। धन गुरु अंगद देव जी महाराज के संबंध में प्रोग्राम चलने ने, नामवर जथे बैठे हुए ने, बड़े सोहने सोहने विचारक बैठे हुए ने, बड़े चरणों च बेनती है सारियां सरवण करके जो है जायो, और सारे खिड़े हुए फुल ने अपनी अपनी महक लेके आए हैं, जरूर बैठ के इन्हों सरवण करना, तो बहुत ज्यादा समा नहीं होया। सारियां दा बार बार धन्यवाद, बुल चुकदी छवां, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ, 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਮਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਵੋ 2.99 ਨੂੰ ਬੈਗ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 2.98 ਦਾ ਇੱਕ।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: सब्जी भले खाना है, रोटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।